फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को मालूम है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो सीऊ का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों।

रेडियो SBS की सर ये सुंदर भजन हरि हरन के आवास में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम। अभी आपने सुना सुंदर सा भजन जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो पेश होगा नरेंद्र चंचल की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

इसमें इसकी सही सुंदर भजन उस प्रोग्राम में नरेंद्र चंचल की आवाज में, नरेंद्र चंचल की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो चले ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं।

दर्शक भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चलिए रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर भजन जो सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।

निगम के आवास में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो एसबीएस के जरिए जरूर

विवेक की आवाज में सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीछ की गए है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री महालक्ष्मी आरती बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में अभी आपने सुना श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो पेश की गई है। इसी आरती भजन के साथ भजन यात्रा का प्रोग्राम खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट एस का पूरा टीम की तरफ से और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt.

फिल्म यस बॉस, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 8:00 प्रोग्राम में 14 मिनट व्यतीत हो चुका है शुक्रवार का दिन 18 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज का ये प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मौसम आज का बदली बदली सा मौसम, सुबह के वक्त यहाँ वहाँ कहीं कहीं बारिश का मौसम होगा, लेकिन दोपहर होने तक शाम होने तक झूरा मौसम होगा। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को वेलकम एंड हेलो गुडमॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को जरूर फॉलो करते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले

अलका याग्निक एंड सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश की गए। क्या कहना फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए मोबाइल फोन की जरिए हमारा ये प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें, मौसमी समाचार और आपका डाक हॉरोस्कोप, अपना ज्योतिष शास्त्र भी आप जाकर देख सकते हैं। और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स हर सुबह और हमेशा आपके लिए पेश किया जा रहा है 24 आवर्स संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सभी सुनने वालों की सेवा में। असरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना उदित नारायण और अलका जी की आवाज में और काफी पसंद किया है। सलमान खान का फिल्म तेरे नाम, उसी फिल्म का गीत पेश की गई उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना जिद्दी फिल्म का नाम।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। कुमार सानू प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना प्यार भरी गीत सानू जी की आवाज में 12 minuten voor 9 स्टूडियो टाइट सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं आज शुक्रवार की सुबह की प्रोग्राम में।

बजकर प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन 18 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। ले चलते हैं आज की प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर। किस

रेडियो SBS के जरिए ये जाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर भी आप रेडियो SBS का ऐप पर आप ऐप कर सकते हैं। जीने की राह फिल्म का नाम मोहम्मद रफी।

रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। काफी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं, तार कर रहे हैं, कुछ बातें होते हैं तार पर। एक गाना है बस प्रोग्राम में पेश होगा लता जी की आवाज में, हिमालया से ऊंचा फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

काली से ऊंचा फिल्म का नाम लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हमारे एक सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में सुबह 9:30 में। आशा भोसले, आशा भोसले की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है कर्तव्य फिल्म का नाम है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महान, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को इस वक्त बहुत से सुनने वालों बस सुनते हैं, देश विदेश में काफी सुनने वालों बस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम में द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म अंदाज, दिलीप कुमार का एक्टिंग किया हुआ फिल्म, फिल्म अंदाज का गीत पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में।

गाना जो पेश की गई खास तौर पर मुकेश जी की आवाज में, फिल्म का नाम अंदाज, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स आप हर एक सुनने वालों के लिए रोजाना और रोजाना पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, सीआईडी फिल्म का नाम, गीता दत्त और मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

ईदा दौर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गए। सीआईडी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। हमारा प्रोग्राम इस वक्त उत्तराखंड लाइट्स रैन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और मुकेश

0: पीएम गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। खासतौर पर उत्तराखंड लाइट सरेन का रहने वाला राजन गिरधारी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और ये गाना को सुनना चाहते थे आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह से बस पेश की गए शुभ दिन और अभी से शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

लैला एंड भूपिंदर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मोहम्मद रफी की ओर, कश्मीर की कली फिल्म का नाम।

क्लासिक फिल्म का नाम द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम है अंदाज।

का गीत पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। लाइव की सर ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-62-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। चले फिल्म डाक की ओर, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। 1952 का फिल्म, फिल्म का नाम डाक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए है। लता मंगेशकर के बाद मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। 1963 का फिल्म, फिल्म का नाम गहरा दाग। आज उड़ता हुआ एक पंछी

अठारह बीस की गई फिल्म का नाम गहरा डाक आज उड़ता हुआ एक पंछी। गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में ताकि हर एक रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुने। ऐसे रोजाना हजारों हजारों सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, फिर भी हर एक को खबर करते ही रहना रेडियो SBS के बारे में। गाना जो अबकी बार पेश होगा लता मंगेशकर की आवाज में, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ तमाम खबरें तमाम रिक्लाम जो आपको देना है हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं टेलीफोन नंबर 03265 65 64 uur per dag ये टेलीफोन नंबर आप सभी के लिए बराबर होता है जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे। अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है घराना। उसी ये फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

साया जहां पर भी हूँ सजना। पाकिस्तानी मूवी घराना का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है कन्हैया, उसी फिल्म का ये गाना सुनते ही रहना।

पीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा और किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

कुमार की आवाज में ये गाना बसपुरुक नाम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में, और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम ताज महल।

पर मशहूरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था ताज महल, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब की बार एक गाना फिल्म अपना देश, उसी फिल्म से बस पेश किया जा रहा है, द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा भोसले की आवाज में। आशा भोसले की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम अपना देश।

जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म अपना देश, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आशा जी के बाद लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश की गई सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले ये गाना की ओर और गाना का बोल है मुझे इश्क हुआ।

इसके जरिए अनुराधा पोटवाल जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं इश्क विश्क फिल्म का गीत की ओर। कुमार सानू एंड कविता, यह कहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क विश्क फिल्म का नाम।

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है शान और श्रेया जी की आवाज में

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्रेया जी की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

जब वी मेट फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अलका याग्निक एंड हरि हरन, अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है

हरि हरन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। कुमार सानू

आप सभी सिल्वलों की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट radio.sbs.nl। नीरज और श्रिया जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

जरिए नवस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना।

सभी सुनने वालों की सेवा में बसपीस किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और जिस तरह से भी आप चाहे हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वो भी इंटरनेट के सहारे। और इसी तरह से भी बहुत सी सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मेरे मेहरबान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। उदित नारायण और अनुराधा पोटवार।

फिल्म का नाम। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6060। इसी तार की नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फरमाइशी के बारे में, आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम के बारे में।

0: क्यों न होगा ये अदाएं।
1: लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम जब जब फूल खिले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम जैसे को तैसा उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी।

दम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को

दौड़ू बता तेरी मर्जी है क्या, जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया, मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या।

जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू।

खबर हुई है क्या? बोल, कैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और सपना की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

वस्त्रों में पीस गए किशोर और सपना के आवास में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पीस गए है। सुन बलो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। अनवर प्रोग्राम में होगा एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।

अनवर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मरहूम मोहम्मद।

Uit de film Jawani Diwani, Kishore Kumar en Asha ji ki awaaz mein ye gana bas program mein pesh ki gayi aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein. आपकी बार मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है. सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 60 66 11. मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम जीने की राह. 1969 का फिल्म मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा जी की आवाज में चले मिलकर अब की बार ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

ना भी क्या की ना और साथी रे आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 24 पर दाग बराबर होता है 0325 65 65 60।

ट्रॉफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर और गाना का बोल है ऐसे ना थे हम।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet. En koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia. Live in concert. Udit

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है, सोने दो। दिल कह रहा है कुछ होने दो।

सोनू निगम अलका याचिक और कोरस की आवाज में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुशों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में, मेरे सैया सुपरस्टार।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मल।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से, और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ।

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है प्यार द रीमेक्स।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एंड कम्स आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजाओ दो रेखा भारद्वाज कम दोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।